0: तुम पर भगवान की मूर्ति चुराने का इल्जाम लगाया गया है।
1: हमारे घर पर अभी छापा पड़ा और चुराई गई एक मूर्ति पाई गई।